श्रीमन नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामा जो श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है, तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं,
0: बाय बाय।
1: सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम?
0: हाँ।
1: काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा,

0: मुस्कुराई पहले जरा आप मुस्कुराई
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 9 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: अरे मैं क्या एक भूचाल हूँ?
1: भूचाल भी और एक नाजुक ख्याल भी, ले लीजिए
0: मेरे लिए।
1: जी आपकी नजर।

0: जानी।
1: ये बात है, कहीं नजर न लगा दीजिए।
0: अजी हम तो आपकी नजर के मारे हुए हैं।
1: तो फिर हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं?

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

करूं।

जिधर में शोले ही शोले, दिल है आखिर कैसे न डोले, हाय देखो जिधर में शोले ही शोले, दिल है आखिर कैसे न डोले।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: क्या है चितचोर?
1: 1 2 3 4
0: क्या है चितचोर?
1: You sing like Kishore, but शादी का दे.
0: Oh yes, September 8.
1: Oh, very late.
0: Darling, wait.

0: सच है बिल्कुल,
1: तू है बुलबुल,
0: सच है बिल्कुल, यू आर वंडरफुल,
1: लग जा गले ए, लग जा गले, दुनिया जले, छम छम छम छम छम छम छम, एक गण हम तुम पे दिल निसार करता है, रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है, रोज

0: बरसों बाद ढूंढने निकली हूं। ऐसा लगता है कि वो किसी औषधि की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनार जी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: नौ बरस लंबी थी ना।

रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 नून इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

लो कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। भैरो बिकम बैरन एंड बैरन बिकम भैरो बिकॉज दे माइंड द वेरी नैरो।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: किनारों की।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

जाता। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आवाज़। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार थीम चॉइस शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार ऑफ द वीक में सुनिए दिए गए स्टार मेहमान पर आधारित गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

हेलो दीवाने दीवानियों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड रेडियो हॉटस्टार के सभी दीवाने दीवानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राधे राधे। दोस्तों मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन, आ चुका हूं लेकर आज का बहुत ही प्यारा शो जिसका नाम है स्टार थीम चॉइस। और आज के थीम दिए हैं आदरणीय जाकी मुलानी जी, और आज की जो थीम के शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, वह है बरसात, बारिश, बरखा और ये पवन, हवा, घटा, रिमझिम, बिजली। तो इस इन सभी गाने का आप आनंद लेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरे पसंद गाने को एंजॉय कीजिए। और आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने।

जी जी बिल्कुल, और यहाँ पे तो बरसात भी हो रही है। हमारे यहाँ बारिश बहुत जोरों की हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, अभी तो हल्की हल्की बारिश हो रही है। आपकी तरफ का मौसम कैसा है जरूर बताएंगे, और सभी दोस्त जुड़ते जा रहे हैं, सभी का वेलकम करते हैं। सबसे पहले जुड़ने वाले हमेशा की तरह हमारे सरफराज जी, सरफू भाई साउथ अफ्रीका से जुड़े हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। और राजेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है राजेश कुमार जी। फूलेबाग संजू भाऊ जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी संजू भाऊ जी। ये महाराष्ट्र से हैं, और साथ ही साथ बता दूं कि जुड़ने

0: स्टार जो सबको दीवाना बना देगी।
1: धन्यवाद जी आपका सर्वजीत सेठी जी। और नाहिद अंसारी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम वालेकुम सलाम आपका भी। और अनिल मेहता जी हैं, इनका भी वेलकम करता हूँ मैं। बिट्टू कुमार जी हैं, वेलकम है बिट्टू कुमार जी। साथ ही साथ जोड़ने वाले दोस्त हैं संध्या पटेल जी, बहुत बहुत वेलकम है दीदी। और दिगंबर जी क्या कहते हैं भाई?
2: हेलो अमन सर जी नमस्कार, गुड इवनिंग। हम भी जुड़ चुके हैं आज की थीम पर और शो सुनने के लिए।
1: धन्यवाद आपका, वेलकम करते हैं आपका भी। अशोक देशमुख जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है अशोक देशमुख जी, निम्बोरा महाराष्ट्र से। और मुबारक हुसैन जी हैं, बहुत बहुत वेलकम है मुबारक हुसैन जी। साथ ही साथ हीरामन खिराड़े जी जुड़ चुके हैं, तो वेलकम है आपका भी हीरामन खिराड़े जी। मीना इब्राहिम जी जुड़ चुके हैं यूएस से, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और सर्वेश भगत जी क्या कहते
3: हैं? अमन सर जी शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
3: आपका ओपनिंग सॉन्ग बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद, थैंक यू बोलते हैं जी।
1: वेलकम है जी आपका भी। और जितेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और साथ ही साथ प्रमोद कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। सभी दोस्तों का वेलकम करते हुए प्रोग्राम का आगाज करते हैं, दो दोस्तों के पास ले चलते हैं। और नाम है दोनों दोस्तों का, एक का नाम है अनिल मेहता और अशोक पाल जी। सुनना चाहते हैं बरसात के दिन आए बरसात। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को।

तो आप मुझे ये भी बताएं कि क्या कभी आप बारिश में किसी से मिलने गए हैं? अगर मिलने गए हैं तो प्लीज अपना वो कैसे मिले होंगे जरा उसका स्टोरी अगर हो सके तो मुझे जरूर आप बोल कर भेजें। और अगर आप इन बारिश से संबंधित कोई भी आपकी जो यादें जुड़ी हैं वो भी आप मुझे अपने फीडबैक के जरिए भेज सकते हैं।

0: बिल्कुल बरसात के तो दिन आ चुके हैं, इसलिए अब तो भाई बारिश का मजा बिल्कुल आने वाला है और फीडबैकों का भी मजा आने वाला है, क्योंकि भाई आप लोगों का मैं फीडबैक शामिल नहीं करता हूं तो आप लोग नाराज हो रहे हैं। बिल्कुल नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप सबका फीडबैक का शामिल करना ही पड़ेगा ना भाई, लेकिन प्लीज कोशिश करेंगे कि अगला अलग अलग तरह के फीडबैक जरूर दें। और सबसे पहले ये क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
1: जी अमन सर जी, अनिल मेहता जी, एक भाई और भी हैं, दोनों भाई मिलीजुली फरमाइश में शामिल किए, दोनों भाई को धन्यवाद।
0: और एक ही चीज को प्लीज बार बार आप लोग कीजिए, लेकिन थोड़ा सा हिसाब से, ताकि सभी को सुनने में अच्छा लगे। और बिट्टू कुमार जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। जी जी प्यारा गाना तो है। हीरामा खेड़ा जी लिखते हैं कि अच्छा इनका भी यही गाना था, ओके जी, तो भाई इसी गाने में मैं शामिल करता हूँ हीरामन खिराड़े जी को। आई एम सॉरी हीरामन जी, मैंने आपके फरमाइश को वो जो आपने लिखा था वो मैं रीड नहीं कर पाया, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन मैं आपको इस गाने में शामिल करता हूँ, या अगर चाहे तो किसी और गाने के लिए मुझे लिख कर भेज सकते हैं, मैं उसमें आपको शामिल कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। एंड जितेंद्र जी लिखते हैं कि नाइस ओपनिंग सॉन्ग सुनने को मिला है, बहुत अच्छा लगा है। कपूर चंद जी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ, बहुत बहुत वेलकम है कपूर जी। बाबूलाल जी लिखते हैं कि अमर सर जी मैं भी जुड़ गया हूँ, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और अशोक पाल जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और पूजा भास्कर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है पूजा भास्कर जी। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि बरसात का दिन आए, ये वाला गाना तो बहुत ही शानदार लगा है। जी जी एकदम शानदार लगा है जी। एंड यहाँ पे प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि बारिश की बूंदे और हाथों में चाय का प्याला, इस मौसम में बस कमी है सिर्फ तुम्हारी, हाय हाय तो बुला लीजिए, लेकिन वो तो आपके पास में है ना। मीना जी लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत गाना लगा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। एंड शाहिद राजा जी लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत वेलकम है शाहिद जी। अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ और ये ट्रैक इसके लिए डिमांड आया हुआ है तीन दोस्तों का, मंगेश देशमुख जी, मोहन निवारे जी, राजमल हिवराले जी, सुनना चाहते हैं आएगा मजा बरसात का जी, मजा आने वाला है, इंजॉय कीजिए और सुनते रहे रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे।

और तो भाई बरसात का मजा ले रहे हैं ना भाई, हम तो गाने का मजा ले रहे हैं। वैसे मैं बता दूं कि जो दोस्त व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे होंगे उनका मैसेज तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। प्लीज रेडियो हॉट स्टार के ऐप से ही मैसेज करें।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक और मैसेज आ रहे हैं। सबसे पहले तो भाई राधा कृष्ण गोप जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है राधा कृष्ण गोप जी। सभी दोस्तों को नमस्कार कह रहे हैं। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि तीनों दोस्तों का गाना बहुत ही लाजवाब लगा है, शानदार लगा है। और सर्वेश भगत जी,
1: जय अमन सर जी, आएगा मजा अब बरसात का
0: जी।
1: तीन भाई अपने फरमाइश में शामिल थे, मिली जुली फरमाइश में, तीनों भाई को धन्यवाद देते हैं।
0: आपका भी थैंक यू सो मच, धन्यवाद देते हैं। जितेंद्र जी लिखते हैं कि आएगा मजा बरसात का, सुनकर दिल खुश हो गया। अच्छा जी, सच में का। एंड यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि नमस्कार। अरे हमारे प्यारे प्यारे प्यारे प्रमोद बगाड़ जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं सर जी आपका। और लगता है कि फिर आज सूरज पूरब का बजाय पश्चिम से निकल गया है, बहुत बहुत वेलकम करते हैं हम आपका। और आते रहिए, अच्छा लगता है। अनिल कश्यप जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है सीवान से, ये तो मेरे मने यानी पड़ोसी मित्र हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं रहुआ के भी। एंड यहाँ पे नाहिद जी लिखते हैं कि यानी कागज की वो कश्ती जो बचपन का जमाना याद आता है, इस भीगे मौसम में गुजरा हुआ फसाना याद आता है, और जब मुलाकात के दिन आते हैं तो दिल पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी तरफ वो पुराना सावन याद आता है। हाँ हाँ बिल्कुल याद आता है, मुझको तो बहुत ही याद आता है जी, हम क्या करें। और यहाँ पे बाबूलाल जी लिखते हैं कि तीनों दोस्तों की पसंद मुझे बहुत ही प्यारी लगी है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बीटू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही झक्कास गाना, एकदम मजा ही आ गया है जी। मीना कुमारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है मीना जी। बिल्कुल भेज सकते हैं लेकिन सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से, मैसेज से नहीं। हीरामन जी लिखते हैं कि ओके ठीक है। और इसके बाद से रविंदर गोरखपुरी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं रविंदर गोरखपुरी जी। साथ ही साथ नाजिम जी जुड़ चुके हैं, और नाजिम जी लिखते हैं कि नहीं देखिए वो बीच में गाना आएगा वो उससे मतलब नहीं है, मुझे वो थीम ही ऐसा है। थीम के शब्द मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, और इसमें उसमें जो शब्द हैं उन शब्दों पे गाने होने चाहिए बिल्कुल। और शब्द एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, वो है बरसात, बारिश, बरखा, और ये पवन, हवा, घटा, रिमझिम, बिजली, ये शब्द उन गाने में आने चाहिए, इसलिए मैं वो गाना प्ले करूंगा। प्लीज दूसरा भेज सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है ना, और सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं दोबारा। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बादलों की ओढ़कर चादर जमीन पर आ रही है घटा, और तुम्हारी यादें भी कुछ ऐसी हैं जो पल पल देती हैं मुझे ये सता। अच्छा, इस ठंडी बारिश की हर एक बूंद ये बयां करती है कि धड़कनों में सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत बसी है। हाय हाय सच में का। यहाँ पे मीना जी लिखते हैं वाह बहुत ही शानदार लाजवाब गाना है, मजा आ गया। मिसाल अंगद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। शायद अजय क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
2: यूं अखियां मिला ले अखियों से, यूं अखियां मिला ले
0: अच्छा
2: अखियों से, परदेश मेरा दिल लूट गया। अमन सर बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग चल रहा है।
0: ओके जी बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग है। और इसी बात पर ये फीडबैक भी शामिल कर लेता हूँ। ओके जाकिर खान जी लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम अमन सर जी, मैं भी जुड़ गया हूँ जी बिल्कुल। और संध्या पटेल जी, अच्छा तो बिल्कुल संध्या पटेल जी आप वहाँ पे भेज सकते हैं। लेकिन अगला जो मैं गाना प्ले करना चाहता हूँ वो तो बहुत ही प्यारा है, और बिल्कुल तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी क्या तुम्हें मालूम नहीं है। एंजॉय कीजिए इस गाने को, भेजी है बहुत ही खूबसूरत आवाज की मलिका, वो सुरों की मलिका कायनात, एंजॉय कीजिए।

0: और संध्या पटेल जी का जो मैसेज है वो लिखते हैं कि बरसात के मौसम मुझे बहुत पसंद था और स्कूल के समय की बात है कि स्कूल में जिस दिन बारिश होती थी वो तो बहुत ही खराब होती थी, लेकिन जिस दिन बारिश होती थी हमारी स्कूल की छुट्टी के वो समय ही होती थी। और जो मजा जब आता था घर जाने में तो मम्मी मतलब बहुत ही डांट लगाती थी, हाँ कि बारिश में भींग गई, हाँ हाँ सच में कहा ऐसा होता है ना, लेकिन बारिश में भींगना बहुत पसंद आता है ना। वैसे मीना जी लिखते हैं कि यही नहीं भेजना है जी, और सॉन्ग रिक्वेस्ट होगा। देखिए सॉन्ग रिक्वेस्ट मैं आपको बताता हूँ कहाँ मिलेगा, रेडियो हॉटस्टार के एप्लीकेशन में सबसे नीचे देखिएगा दाहिने साइड में लिखा होगा मोर, जहाँ पे मैसेज कर रही है ना उसी के बगल में लिखा होगा मोर, MOR मोर, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा, वो लिखा होगा सॉन्ग रिक्वेस्ट, सॉन्ग रिक्वेस्ट पर क्लिक कीजिएगा और जो फॉर्म मिलेगा उसमें नाम और गाने का बोल ये तो भरना जरूरी है, बाकी जो जो अगर ऑप्शनल है आप चाहें तो भर सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि दिल कुर्बान सर अपने अपना अपना पड़ोसी मित्र बना लिया। हाँ जी बिल्कुल, धन्यवाद देते हैं आपको भाई अनिल कश्यप जी, आप तो मित्र हैं ही। और राधा कृष्ण जी लिखते हैं कि तुम्हें चाहना अब आधा सी हो गई, अच्छा सच में कहा, लिखते हैं कि तुम्हें चाहना अब आधा सी है और तुम जो मेरे दिल में बसती है न जाने ये कैसी मोहब्बत सी है, और तुम साथ ना हो फिर भी दिल तुमसे ही ये रिश्ता रखता है क्योंकि तुमसे ये प्यार करने की चाह सी है। आए हाय कपूर चंद जी लिखते हैं कि सुपर सुपर सुपर सुपर से सॉन्ग ऊपर वाला गाना है ये। मीना इब्राहिम जी लिखते हैं कि वाह क्या लाजवाब पसंद चल रहा है। नाही जी लिखते हैं कि ज्यादा ये जताया नहीं तो कभी ये प्यार मोहब्बत बेहिसाब करते हैं और हम अपनी हर दुआ में बस तुम्हारी ही इंतखाब करते हैं, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है, हम अपनी जिंदगी की हर शाम तुम्हारे नाम करते हैं। अच्छा सच में, ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
1: बरसात का मौसम कहाँ है सजनी को मिले साजन साजन, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम तुम्हें मालूम नहीं है।
2: बहुत ही लाजवाब की और कार्यक्रम बहुत ही शानदार चल रहा है, तो सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो सबको दीवाना बनाते हैं। मैं सर्वजीत से थी,
0: थैंक यू सो मच सर्वजीत जी। नंदलाल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका, गाजीपुर यूपी से। प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि सारे जमाने में तुम जैसी कोई हसीन सूरत नहीं, अगर मिल जाओ हमें तो हम जैसा कोई खुश नसीब नहीं। बिल्कुल वाह क्या बात, ये तो मेरे दिल की आवाज है। गोविंदा खंडाटा जी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ, लेकिन अगला गाना जो मैं प्ले करने वाला हूँ आनंद जी का, घटा छा गई है सच में, बाहर आ गई है, इंजॉय कीजिए इस गाने को।

बिल्कुल घड़ा छा गई है और बाहर आ गई है और यहाँ पे तो भाई बरसात हो रही है बहुत ज्यादा, मेरे यहाँ हो रही है, आप क्या हो रही है आपने बताया नहीं मुझे। जाकिर खान जी लिखते हैं कि ये तेरी आंखों के सामने ये शहर कौन देखेगा, और तू दरिया सी है ये लहर कौन देखेगा, तू खूबसूरत से ज्यादा खूबसूरत है और तुझे देखने के बाद ताजमहल कौन देगा। अरे कोई नहीं देगा जी, मेरे तो ताजमहल तुम ही हो ना। वैसे प्रकाश जी लिखते हैं कि गुड इवनिंग अमित सर जी, मैं भी जुड़ गया हूँ, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। हुकुम चंद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है कोटा राजस्थान से। अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि घड़ा छा गई है बाहर आ गई है, बिल्कुल सच में बाहर आ गई, मजा आ गया अशोक सुन के। बाबूलाल जी लिखते हैं कि अनंत जी की पसंद मुझे बहुत प्यारी लगी है प्रकाश। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि आज के सभी गाने बहुत एक से बढ़कर एक चल रहे हैं। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि घटा छा गई है बाहर आ गई है बिल्कुल, और मैं फंस गया हूँ बारिश में जी, अभी जब से मैं निकला हूँ बारिश में ही फंसा हूँ। अच्छा ये बात है। मंगेश जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और दत्ताक्रम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। इसी बात पर अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ, 1942 का वो लव स्टोरी का वो बहुत ही प्यारा नगमा है जिसे भेजी है और जिसे डिमांड किया हुआ है हमारे खान अमीना जी ने, यानी अमीना खान जी ने। तो अमीना खान जी रिम झिम एंजॉय करते रहिए इस ट्रैक को।

बिल्कुल ये गाना हो और साथ में वो मेरी महबूबा हो और एक साथ में चलने का मजा ही कुछ और रहेगा, पानी में भींगते हुए वो बातें करते हुए, हाय क्या सीन होगा, है ना? जस्ट इमेजिन।

0: बिल्कुल, चलते रहिए और सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे, और एक से बढ़कर गाने आने वाले हैं, बस साथ बने रहिए। और एमडी नाजिम जी लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग है जी जी, बहुत ही प्यारा गाना, ये तो गाना मुझे दिल के मेरे बहुत करीब है, मुझे बहुत पसंद है ये गाना, और ये गाना है और मैं प्ले ना करूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे जितेंद्र जी लिखते हैं कि बहुत बहुत ही खूबसूरत गाना चल रहा है मनसा जी। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि ये आरजू थी कि हम उसके साथ चले, मगर वो शख्स तो रास्ता बदल लिया है, ओहो क्या बात है जी, बारिश से बेवफा निकला आपके लिए। और शमशाद हुसैन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम। लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम अमन भाई जान, और मैं भी सुन रहा हूँ, रिमझिम बारिश में सोहन खेत में धान रोप रहा था। अच्छा, लिखते हैं कि रिमझिम बारिश में सोहन खेत में धान रोप रहा था और तभी राधा गर्मा गर्म ये पकौड़े और कड़क चाय लेकर मेड़ पर आ गई। सोहन ने झटपट हाथ धोया और चाय की उस यानी कि चुस्की के साथ खस्ता पकौड़े का लुफ्त उठाया, उसकी थकान पल भर में गायब हो गई और वो हंसकर बोला, ऐसी बारिश और पकौड़े हो तो दिन भर धान लगा सकता हूँ। जी जी बाप रे, तब तो मुझे भी मजा आएगा खाने में, अभी मुझे भी मन करने लगा खाने के लिए यार, कोई मुझे भी बना के भेजो यार जल्दी से। और रविंदर जी लिखते हैं कि अच्छा ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: हेलो अमन सर।
0: जी जी बोलिए बोलिए।
1: मैं मिसाल अंगद बीड महाराष्ट्र से आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ, और अमन सर जी अभी तक आपने जो गाने सुनवाए हैं ऐसा लग रहा है कि आप तो हमको आज पूरी तरह से बारिश में भिगोगे जरूर, क्योंकि गाने ही कुछ ऐसे आज सुनवा रहे हो और आज मौसम भी बिल्कुल वैसा है। तो अमन सर जी आज की शाम बहुत सुपर हिट शाम होने वाली है और गाने बहुत अच्छे अच्छे सुनने को मिलेंगे। धन्यवाद।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी भाई। और मैं बता दूं, ओके और यहाँ पे रविंद्र गोरखपुरी जी लिखते हैं मस्त मस्त मस्त गाना चल रहा है सर जी, दिल खुश हो रहा है एकदम सुन सुन के। मीना कुमारी जी, आपका रिक्वेस्ट मेरे पास आ चुका है, टेंशन मत लीजिए, जैसे ही मौका मिलेगा मैं आपके गाने को जरूर प्ले करूंगा। एंड नंदनी माँ जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं गाना बहुत ही सच में बहुत प्यारा है। और जी बिल्कुल भाई, सहमत है और सहमत होना चाहिए। अमीना खान जी लिखते हैं कि शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया जर्रा नवाजी अर्जमन जी और मेरी पसंद प्ले करने के लिए, और महसूस कीजिए सम अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो वाला, प्यार हुआ इकरार हुआ फिर प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, अरे डरता है ना जी, क्योंकि कहीं कहीं वो गुस्सा ना हो जाए, है ना। वैसे फिलहाल अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ, और वो गाना जिसे लेके आए हुए हैं हमने जितेंद्र जी, उड़ते बादल से पूछो, भाई पूछ लीजिए नाम क्या है, नहीं तो फिर दिक्कत ना हो।

बिल्कुल, अगर नाम पता है तो मुझे भी बता दो, लेकिन मुझे नाम से क्या लेना, मुझे तो अपने नाम से लेना मतलब है ना, है कि नहीं मीना जी? लिखते हैं कि सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से आ गया है जी गाना आपका, मैं कितना बार बताऊं, आ गया है आ गया है आ गया है। एंड जितेंद्र जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया मन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। वैसे अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि उड़ते बादल से पूछो, ये भी ये वाला गाना भी मतलब कमाल का है। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि बारिश और मोहब्बत दोनों ही यादगार होते हैं, बारिश में जिस्म भींगता है और मोहब्बत में आंखें आए है, क्या कह दिया भाई। तो इसी बात पर अगला गाना मैं सुनाने जा रहा हूँ, जिसे लेकर आई है काजल झक्का जी, और वो गाना है टिप टिप बरसा पानी। सुनवाते हैं, इंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल, ओहो क्या बात है। और मेरे पास फीडबैक भी बहुत सारे आ रहे हैं, और जैसे कि मैं बता दूं कि बहुत सारे फीडबैक, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड भाई, तो ऐसा संभाल के यार। और नाजिन देखते हैं कि ओके ठीक है, भेज सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और कोशिश करूंगा मैं। मोहन वारे जी लिखते हैं कि अमन सिंह जी मैं भी जुड़ गया हूँ, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी मोहन वारे जी। मिठू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन फरमाइश है ये सर जी, बहुत मजा आ रहा है। और बता दूं कि इसी गाने के लिए मैंने अभी भी देखा कि सॉन्ग रिक्वेस्ट में रविंदर जी ने भी इसी गाने को भेजा था, रविंदर मतलब गोरखपुरी जी ने। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि काजल जी का गाना मुझे बहुत ही पसंद आया है जी। ओके अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि आज तो बाढ़ आने वाली है सर जी आपकी छुट्टियों में। हाँ हाँ बिल्कुल एकदम आने ही वाली है, क्योंकि बहुत सारे गाने आज गाने की बरसात होने वाली है। बिल्कुल एक से बढ़ के एक ऐसे ऐसे गाने हैं कि बिल्कुल मैं बारिश में भींग चुका हूँ। और ये फीडबैक सुन लेता हूँ, ये क्या कहते हैं
1: अजय अमन सर जी, काजल झा जी और सभी भाई और बहन अपने अपने गाने में शामिल करते हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं।
0: ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मीना जी लिखते हैं बहुत बहुत बहुत ही शानदार गाना है, बहुत दिल खुश हो गया इस गाने को सुनकर। और दत्तकरण जी लिखते हैं कि काजल जी का गाना एकदम मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। एंड यहाँ पे बाबूलाल जी लिखते हैं कि वाह झक्कास पसंद मुझे काजल जी का, एकदम झक्कास लगा है। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद है, बहुत मजा आ रहा है सुन सुन के। जागीर खान लिखते हैं कि काजल जी की च्वाइस एकदम सच में बहुत ही सुपरहिट लगा है। एंड रामकेश जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है रामकेश जी। और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि घाटा छा गई ये वाला गाना मुझे बहुत पसंद आया था, थैंक यू सो मच। और ये फिर
2: हेलो अमन सर, मैं फिर एक बार मिसाल अंगद और अमन सर जी आपने बहुत शानदार गीत सुनवाया, बहुत अच्छा लगा। मोहरा का ये सुपरहिट गीत जिस भाई साहब की पसंद होगी इनको मैं दिल से धन्यवाद दूंगा। और अमन सर जी आपने भी बहुत फ्रेश मूड में इस गाने को गाया, तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा।
0: ओके जी, इसी धन्यवाद। अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ जिसकी डिमांड आई है नाहिद जी की तरफ से नासिक से, और ये सुनना चाहती हैं पहली बारिश में। और तू जी एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को।

0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल पहली बारिश हो और आए है क्या होगा। मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है, जब मैं मिलूंगा तो मुझे एक्सपीरियंस होगा, है कि नहीं? और काश ऐसा ही हो। वैसे मेरे पास फीडबैक बहुत सारे आए हुए हैं और आरजे वंशिका जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और उनके बाद यहाँ पे इशाक हुसैन जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम सलाम भाईजान, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और साथ ही साथ अनिल मेहता जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
1: हेलो आरजे मन सर जी, मैं भी आपके लाइव शो में जुड़ गया हूँ।
0: अच्छा।
1: और बारिश के गाने मुझे सभी बहुत अच्छे लगते हैं और बारिश के गाने तो मैं सुनने को मुझे बहुत मजा आता है। थैंक यू सो मच, बहुत ही वेरी नाइस आज आप प्रोग्राम लेकर आए हो, थैंक यू।
0: ओके जी, धन्यवाद आपका भी। उनके बाद मैं बता दूं कि अमीना खान जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग विथ म्यूजिक। जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा ये लिखते हैं कि ऐसे मतलब यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे ऐसी चाय बन जाती है अगर जी बिल्कुल, अरे हमको वो चाय भेजिए ना, मुझे बहुत मन कर रहा है पीने का। वैसे यहाँ पे अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि ये नाही जी के पसंद मुझे बहुत ही शानदार लगी है, थैंक यू सो मच और नाही जी। और मीना कुमार जी लिखते हैं कि हाँ जी बिल्कुल चलेगा जी गाना, मैं कितना बार आपसे कहूँ। और यहाँ पे और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि अगर भीगने का इतना ही शौक है बारिश में तो देखो ना मेरी आंखों में, बारिश तो हर एक के लिए होती है लेकिन लेकिन ये आंखें सिर्फ तुम्हारे लिए बरसती हैं। आए हाय क्या कह दिया भाई। और यहाँ पे मोहन हमारे जी लिखते हैं कि ये पहली बारिश में और तू वाला गाना मुझे बहुत ही पसंद आया, थैंक यू सो मच। हीरामा खेड़ा जी ओ माय गॉड, अच्छा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल राजमल जी लिखते हैं कि अर्जमन जी नमस्कार, बहुत ही प्यारा प्यारा गाना प्ले हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बाबूलाल जी लिखते हैं कि नाही जी की पसंद मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच नाही जी। एंड मीना जी लिखते हैं वाओ क्या बात है, क्या पसंद है नाही जी की। एंड शमशाद हुसैन जी लिखते हैं कि ये जो बारिश की बूंदें जमीन पर गिर रही हैं, हर एक बूंद में यादें पुरानी बह रही हैं और हवाओं में घुली हैं, सौंधी सी वो मिट्टी की महक और लगता है आज फिर वो हमसे कुछ कह रही हैं। ये मौसम अक्सर पुरानी यादों को ताजा कर देता है। जी बिल्कुल, लग रहा है कि आपको भी एक्सपीरियंस गए होंगे इसीलिए, है ना। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि आपकी आवाज अमेजिंग है, आप जब साथ में गाते हैं तो सच में का मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप कह रहे हैं। एंड यहाँ नितिन सक्सेना जी लिखते हैं कि अभी अभी जुड़ा हूँ, जी जी बहुत बहुत वेलकम है। नाजिम जी लिखते हैं कि अच्छा ठीक है मैं देख लेता हूँ, कोई बात नहीं है। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि शानदार फरमाइश है, थैंक यू सो मच। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना है, जी बिल्कुल अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ। और मतलब क्या ही बोलूं, गाना मैं अभी प्ले करता हूँ यानी मीना कुमारी जी का और साथ साथ नंदलाल यादव जी का। बरसात आ गई भाई, सुन लीजिए पहले आप।

0: बिल्कुल बरसात आ गई है और बरसात का मजा लेते रहिए, सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त अमन। और अनिल सक्सेना जी, सॉरी अनिल यानी कश्यप जी लिखते हैं कि बादलों को आता देख के मुस्कुरा लिया होगा, बादलों को आता देख के मुस्कुरा लिया होगा और कुछ न कुछ मस्ती में गुनगुना लिया होगा। ऊपर वाले का शुक्र अदा किया बारिश के होने से कि इस बहाने कि तुमने नहा लिया होगा। अच्छा लग रहा है कि और दिन नहीं नहाए होंगे। अनिल मेहता जी लिखते हैं कि वाह बहुत ही लाजवाब गाना है ये, बारिश के ऊपर सच में बहुत ही खूबसूरत लगा है, धन्यवाद देते हैं इस प्यारे से गाने के लिए। और अजय घोष जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं अजय घोष जी। रामकेश जी लिखते हैं कि ये मीना जी और नंदलाल यादव जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई है। अमीना खान जी लिखते हैं कि जी बिल्कुल बिल्कुल कर दीजिए धन्यवाद देते हैं आपको, मैं डाउनलोड कर लूंगा पी लूंगा। राही जी लिखते हैं कि रिमझिम फुहारों के साथ फिर वही पुरानी बात आ गई, दिल को बेकरार करने वाली खूबसूरत सी रात आ गई, तुम पास नहीं हो तो क्या हुआ मेरे हम सफर, हवा के झोंकों में लिपटी तुम्हारी याद आ गई है, क्या बात है। वैसे मेरे पास जितेंद्र जी लिखते हैं कि शानदार पसंद चल रही है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एंड राधाकृष्ण गोपी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत अच्छा लगा जी। और नितिन सक्सेना जी, भाई आप अभी अभी जुड़े हैं तो भाई कहाँ कौन सा गाना भेजे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रेडियो हॉटस्टार के एप्लीकेशन में जाकर आप सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से मोड में जाकर भेज दीजिए, तो वहां से मैं कोशिश करूंगा गाने को प्ले करने के लिए। इसहाक हुसैन जी लिखते हैं कि छाया जो बरसात आ गई, बहुत ही खूबसूरत नगमा सुनने को मिला। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बरसात आ गई गाना ये बहुत ही बेहतरीन लगा है। और दिगंबर जी क्या कहते हैं,
1: अमन सर जी हमारे गाने आ जाएंगे कि कहीं?
0: हाँ आ जाएंगे बिल्कुल, टेंशन फ्री रही है जी। राजमल जी लिखते हैं कि यार जी अमन जी बरसात वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। इसी बात पर अगला गाना मैं प्ले कर रहा हूँ कपूर चंद जी का, बरसते पानी का मजा कुछ और होगा, है कि नहीं? एंजॉय करते रहिए गाने को।

0: वाह क्या गाना, सच में गाना मुझे बहुत पसंद आया है। और वैसे मेरे पास बहुत सारे फीडबैक भी आए हुए हैं, शामिल करता हूँ मैं अनिल मेहता जी, जितने आरजे मन जी आज के जितने भी गाने प्ले हो रहे हैं सच में बहुत मजा आ रहा है, बहुत लाजवाब है। मीना कुमारी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के जी, अब खुश हो गई ना मीना जी, अब इत्मीनान की सांस लेते रहिए और सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बनाते हैं। और अजय कुछ लिखते हैं लाजवाब गाना है जी, ये तो गाना मुझे भी बहुत पसंद है, थैंक यू कपूर चंद जी आपने इस गाने की फरमाइश किया डिमांड किया। एंड इसका कुछ लिखते हैं कि बरसते पानी का मजा कुछ और होगा, जब हाथ में तेरे हाथ होगा और तेरा साथ होगा, ये रिमझिम की बूंद है और ये सुहाना मौसम, अगर तुम पास हो तो हर लम्हा बेमिसाल होगा जी, बिल्कुल होगा भाई। एंड कपूर चंद जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। ऐसी जितेंद्र जी लिखते हैं कि अति सुंदर सॉन्ग है जी, बिल्कुल है भाई। एंड बाबूलाल जी लिखते हैं कि कपूर चंद जी की बसर मुझे बहुत पसंद आई है। एंड राम कुमार मिस्त्री जी लिखते हैं कि नमस्कार अमनसा जी, मैं भी जुड़ गया हूँ और मजा आ गया सुन के, सभी दोस्तों के पसंद एक से बढ़कर एक प्ले हो रहे हैं। नितिन सक्सेना जी लिखते हैं कि अरे भाई उधर भेजिए ना, यहाँ नहीं भेजना, यहाँ पे भेजने की कोई जरूरत नहीं है, भेजना है तो उधर भेजिए, यानी सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से भेजिएगा तो मैं प्ले करने वाला हूँ। अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ बहुत से दोस्तों की फरमाइश है, मैं आपको बता दूं इतने सारे दोस्त हैं, मतलब पूरा ग्रुप शामिल है, मतलब दो दो ग्रुप के दोस्त महारथी उसमें शामिल हैं, जैसे कि अशोक देशमुख जी का ग्रुप हो गया, गजानंद जी का ग्रुप हो गया, और मेरे पास ऑडियो जो मेरे पास पहुंचा हुआ है उसमें ऑडियो में पहुंचा हुआ अशोक देशमुख जी का ऑडियो है, एंड सर्वेश भगत जी का है, एंड संजू भाव जी का है, गजानंद जी का तो ग्रुप है ही उसमें शामिल, एंड इसमें शामिल है सुनीता गोप जी भी शामिल है, हीरामन खिराड़े जी भी शामिल है, सभी की पसंद एक ही है, वो गाना आपको अभी सुनने को मिलने वाला है, लेकिन पहले ऑडियो से सुन ले भाई क्या क्या कहते हैं, पहले अशोक जी की ही सुनते हैं, अशोक देशमुख जी क्या कह रहे हैं सुनते हैं इनके ऑडियो को।
1: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार,
1: मैं निमोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख,
0: बहुत बहुत वेलकम है जी।
1: आज है स्टार थीम चॉइस, तो मुझे एक गीत सुनना है, फिल्म का नाम है जान की कसम।
0: अच्छा।
1: और गाने का बोल है बरसात हो रही है बरसात होने दे।
0: अच्छा।
1: ये गीत सबसे पहले मैं आपको और आपकी सुंदरता की मूर्त को डेडिकेट है, और जितने भी हॉट स्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
0: ओके जी, और सुनवाता हूँ इसमें हमारे संजू भाव जी भी क्या कह रहे हैं, इनकी भी सुन लेते हैं ना।
2: रेडियो हॉट स्टार सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आरजे अमन सर जी, आपको भी हमारा दिल से प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार
2: अमन सर जी, कैसन बानी? ओके अमन सर जी, हम भी बहुत ही बढ़िया बानी। अमन सर जी, मैं फुले भक्त संजू भाऊ बोदवड़ महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। आज है गुरुवार और आज की अपनी थीम है स्टार थीम चॉइस। तो आज के कार्यक्रम में बरसात, बारिश, बरखा, पवन, हवा, घटा, रिमझिम और बिजली, ये प्यारे प्यारे शीर्षक दिए गए सर। तो आज के कार्यक्रम में इसी थीम के ऊपर गीत चलने वाले हैं सर। तो हमने बारिश यह शीर्षक चुना है सर। फिल्म का नाम है जान की कसम। यह फिल्म 1991 में रिलीज हुई थी सर। आप हमें इसी फिल्म का एक गीत सुना दीजिए जिसे आवाज़ दिए हैं कुमार सानू जी और अनुराधा पौडवाल जी इन्होंने, और गीत के बोल सर इस प्रकार हैं।

0: आपकी सुंदरता की मूर्त यह गीत मैं उनको भी डेडिकेट करूंगा सर।
1: थैंक यू सो मच उनके लिए,
0: धन्यवाद सर उनके लिए भी। बाद में चुलबुली आवाज के मलिका मेरी छोटी और प्यारी बहन आरजे वंशिका जी, आदरणीय आरजे परमार जी और रेडियो स्टार सुन रहा मेरा पूरा परिवार, यह गीत मैं सभी को डेडिकेट करूंगा सर, प्लीज सुना दीजिए। रेडियो स्टार जो दीवाना बना दे, अमन जी के साथ मैं फुले भक्त संजू भाऊ, धन्यवाद।
1: सर्वेश भगत जी,
2: आरजे अमन सर जी, सुसंध्या नमस्कार, नमस्ते जी। आज हमारा फरमाइश का फिल्म है जान की कसम, और गाने का बल है बरसात हो रही है बरसात होने दे। हाउ द स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरा जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, परशकिशोर भगत, आनंद शेखर, सन कुमार, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख भाई जी, आत्माराम पाटिल जी, अनिल मेहता जी, नंदलाल यादव जी, आरजे अमन सर जी, सुंदरता किमोर जी, आरजे रत्ना जी, आरजे वंशिका जी, आरजे एम एस परमार जी, और सभी आरजे और सभी भाई और सभी बहन और सभी लिसनर, इसमें सभी सुनाल जी का जयराम जी के अमन
1: जी, रामन जी सुनते हैं।
3: नमस्कार आरजे अमन सर,
1: नमस्कार,
3: गुड इवनिंग। मैं हीरामन खिराड़े वाशिम महाराष्ट्र से,
1: वेलकम जी।
3: आज बरसात इस थीम पर मुझे भी एक गीत सुनना है, और गीत के बोल है,
1: अच्छा तो बोल तो मैंने आपको हटा दिया है।
3: इस गीत के लिए पहले तो आरजे अमन सर जी आप शामिल है,
1: थैंक यू,
3: और आपकी सुंदरता की मुहूर्त के लिए भी ये गीत डेडिकेट है,
1: थैंक यू सो मच।
3: और आरजे वंशिका जी भी इसी गीत में शामिल है। कुछ मेरे प्यारे मित्र है जैसे कि अनंत कुलकर्णी जी, अमोल कांबळे जी, मिसाल अंगद जी, गजानन सालोकार जी, संतोष यश काळे जी, फुले भक्त संजय भाऊ जी, रोहित कुमार जी, सर्वेश भगत जी, रवि मुहाळे जी, इलियास कुरेशी जी, और रेडियो हॉटस्टार सुनने वाले सभी दीवाने और दीवानियों को ये गीत डेडिकेट है। ओके, धन्यवाद।
1: आत्माराम जी शामिल हैं इस गाने में, सुनीता गोप जी शामिल हैं, गजानन जी का पूरा ग्रुप शामिल है, तो आप सभी के पसंद पे ये गाना बरसात हो रही है, बरसात होने दो, जो अब तक हुई ना वही बात होने दो, बिल्कुल होने दो भाई, क्योंकि ये वाला गाना मतलब क्या ही बोले, इतना प्यारा है ना, मतलब जब भी सुनो तो दिल खुश हो जाता है। तो एंजॉय कीजिए इस प्यारे से ट्रैक को।

0: होने दे। अमन सर जी,
1: जी।
0: आप यह गीत सुना दीजिए और डेडिकेशन में याद करूंगा सर। सबसे पहले आपको वेलकम अमन सर जी, बाद में

और इसी गाने में शामिल है हमारे एमडी एमडी यानी कि नाजिम जी, वो भी अभी अभी मैं देख रहा हूँ यानी कि चेक कर रहा हूँ तो उनका यानी कि प्लेलिस्ट में मतलब सॉन्ग रिक्वेस्ट में उनका नाम आया हुआ है। नाजिम जी शामिल है आप भी इस गाने में।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे दोस्तों के फीडबैक आ चुके हैं, शामिल करता हूँ सबसे पहले सर्वेश भगत जी का।
1: अमन सर जी, हम लोग का ग्रुप गजानन टोकर जी का ग्रुप और भी भाई और बहन इसमें शामिल है, सभी को भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू। और आपने गाना चला दिया, आपको लाख लाख धन्यवाद, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और साथ ही साथ बता दूं कि अनिल मेहता जी ने बहुत ही लाजवाब गाना सुनने को मिला है, धन्यवाद देते हैं सभी दोस्तों को। और प्रमोद कुमार सिंह के रिस्पेक्टेड गजानन ग्रुप, अशोक देशमुख जी ग्रुप और जितने भी दोस्त मिले जुले फरमाइश के लिए शामिल के सभी को थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। एंड यहाँ पे किशन पाल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है किशन पाल शाक्या जी। जितेंद्र जी लिखते हैं कि गजानन सलोकार जी के ग्रुप की फरमाइश मुझे बहुत बेहतरीन लगी है। और साथ ही साथ हीरामन जी लिखते हैं कि मेरी फरमाइश के साथ साथ सभी साथी की मिलीजुली फरमाइश को शामिल करने के लिए धन्यवाद देते हैं। नाजिम जी लिखते हैं कि धन्यवाद अमन सर जी, हाँ अभी अच्छा लगे देख लेना तो फिर आप कहते हैं कि मेरा गाना प्ले नहीं किया। और सुनीता गोप जी लिखते हैं अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा भी गाना प्ले करने के लिए। ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
2: हेलो अमन सर,
0: बोलिए
2: फिर एक बार मिसाल अंगद। और अभी जो गाना आपने सुनवाया बरसात हो रही थी, तो हमारे परम मित्र हीरामन खिराड़ी जी और आदरणीय गजानन सालोकार जी, इन दोनों ने भी अपने गाने में मुझे याद किया और मैं इस दोनों का भी दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। अमन सर जी, आज बहुत बेहतरीन गाने 90s के सुनने को मिल रहे हैं, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हम कार्यक्रम का पूरा मजा ले रहे हैं। और मैंने भी मेरा गाना सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से,
0: हाँ उसके लिए तो देखा जाएगा, अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ कि आपका गाना प्ले होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मुझे वहाँ पे थीम पर चेक करना पड़ेगा। लेकिन वो जो आपने गाना भेजा है वो तो स्टार्टिंग वाले गाने हैं, और अब तो स्टार्टिंग बहुत पीछे छूट गया है, बहुत निकल गया है, तो अब उस गाने की उम्मीद नहीं रखी है बिल्कुल। वैसे मेरे पास नहीं जी लिखते हैं कि देखो बाहर कितना शिद्दत से अच्छा देखो बाहर वो कितनी शिद्दत से बरसात हो रही है, जैसे आसमान से मोहब्बत की शुरुआत हो रही है, हर एक बूंद सीधे दिल पर दस्तक दे रही है, और बंद आंखों में सिर्फ तुमसे ही बात हो रही है। और नाजिम जी का गाना, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच इतना प्यारा गाना सुनाने के लिए, अमेजिंग। और राधाकृष्ण गोप लिखते हैं कि सभी दोस्तों की मिलीजुली फरमाइश मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू सो मच। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों का इतने प्यारे प्यारे गाने की फरमाइश के सभी का थैंक यू सो मच। एंड अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि आज बादल वो यानी कि काले घने हैं, आज चांद पे लाखों ये पहरे हैं, और कुछ इन टुकड़े मेरी वो तुम्हारी यादों के बड़ी दिल से मेरे दिल में ठहरे हुए हैं। अच्छा लिखते हैं सुपर सॉन्ग भी है ये गाना, अच्छा जी बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि धन्यवाद अमनसा जी, और आपने हमें सभी दोस्तों की फरमाइश को सुनवा दिया, धन्यवाद देते हैं। नंदनी माँ लिखती हैं कि बहुत ही प्यारा गाना था जी, प्यारा गाना तो था ही था। आरिफ सिंधी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और लिखते हैं कि सभी दोस्तों की मिलीजुली फरमाइश बहुत ही शानदार चल रही है। कुंता बिनी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, और सभी दोस्तों को धन्यवाद दे रही हैं। और ये फीडबैक,
3: मैं एक बात तो कहना चाहूँगा जी, मतलब इतने दोस्तों की फरमाइश का जो गाना है वो तो आपने पूरा ही बजाना चाहिए।
0: अच्छा जी क्या करूं भाई जान, इतने सारे दोस्तों की फरमाइशें हैं ना, अंत में छूटता है तो मुझे बहुत अजीब लगता है, मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी छूटेगा ही। मतलब अब लगता है कि मुझे ना लिमिट लगाना पड़ेगा कि भाई इतना बेहतर आप फरमाइश भेज सकते हैं, उसके बाद से फरमाइश करना बंद, क्योंकि आप फरमाइश करेंगे और मैं नहीं लूंगा तो आप नाराज हो जाएंगे। आप लोग नाराज ना होते होइए बिल्कुल। वैसे अगला गाना मैं सुनवाने वाला हूं, और यहां पे इशाक हुसैन जी का सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन जी सुनवा दिया, फिल्म स्टार का लाजवाब गाना।

ये बताइए कि आप सबको आवाज अच्छी आ रही है या नहीं, क्योंकि अमीना खान लिखती है कि इनको आवाज बहुत स्लो स्लो जा रही है। मतलब गाने की आवाज। और गजानंद जी लिखते हैं आदरणीय अमन सर जी, हम सभी साथियों की मिली जुली फरमाइश को प्ले करने के लिए।

0: ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा सुगुन है और सच में आप इस यानी कि बारिश का आनंद लेते हुए सुनते रहिए रेडियो हॉट एचआर जो दीवाना बना। अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो वैसे मेरे यहाँ तो आज हो रही है और मैं तो अभी स्टूडियो में बैठकर गाने का आनंद ले रहा हूँ, बरसात वाले गाने का। और वैसे बहुत से दोस्तों ने एक से बढ़ के गाने की डिमांड किया है, सभी का थैंक यू सो मच। जितेंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ अजय कुछ लिखते हैं कि ओके हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया ना जी, इसीलिए मुझे आधे आधे गाने प्ले करने पड़ते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि पूरे पूरे गाने प्ले करूँ और पूरा गाने प्ले करने के लिए मुझे आपका फीडबैक शामिल नहीं करना पड़ेगा। फीडबैक शामिल नहीं करता हूँ तो लोग नाराज होते हैं कि मेरा फीडबैक शामिल नहीं हुआ, वैसे होता है ना। और यहाँ पे नंदिनी मालिकते हैं कि बहुत ही अच्छी आवाज आ रही है बाबू, थैंक यू सो मच माँ जी। और दिगंबर जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: गाने की आवाज एकदम सुपर साफ आ रही है,
0: ओके
1: टॉप आवाज आज टॉप चल रहा है रेडियो।
0: धन्यवाद धन्यवाद देते हैं आपको भी। और गजानन जी लिखते हैं सुन सुन सुन बरसात की धुन, सुन बेहतरीन पसंद, मजा आ गया, आनंद आ गया सुन के एकदम। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
2: गुड इवनिंग आरजे अमन सर जी,
0: जी
2: अमन सर जी, मैं फुले भक्त संजू भाऊ
0: बोलिए जी
2: बोजवड़ महाराष्ट्र से। सबसे पहले आपको मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा, आपने हमारी ग्रुप फरमाइश चलाई और आज हमारे ग्रुप फरमाइश के साथ हमारे आदरणीय सर्वज भगत जी, आदरणीय आत्माराम पाटिल जी, आदरणीय सुदेश देशमुख जी, सुनीता गोप जी और हमारे मित्र एमडी नाजिम जी, इन सभी दोस्तों की आज ग्रुप फरमाइश चली सर, मतलब कि आज आपने दो ग्रुप की फरमाइश चलाई सर, थैंक यू सो मच। और आपने हमारे ग्रुप फरमाइश के पहले हमारे मित्र कपूर चंद जी, इनकी फरमाइश चलाई सर, उनके पहले नंदलाल यादव जी और मीना कुमारी जी, इन दोनों की अपने म्यूजिकल फरमाइश चलाई सर, उनके पहले इनायत अंसारी जी, इनकी फरमाइश, उनके पहले मेरे छोटी और प्यारे बहन काजल झक्का जी और रविंद्र गोरखपुरी जी, इन दोनों की अपनी म्यूजिकल फरमाइश चलाई सर, उनके पहले जितेंद्र जी, अमीना खान जी, अनंत जी, संध्या पटेल जी, इनकी अपने बैक टू बैक फरमाइश चलाई सर, उनके पहले मोहन नेवारे जी, मंगेश देशमुख जी और राजमन हिराड़े जी, इन तीनों के अपने म्यूजिकल फरमाइश चलाई सर, उनके पहले अनिल मेहता जी, अशोक पाल जी और हमारे मित्र हीरामन खिराड़े जी, इनकी अपने म्यूजिकल फरमाइश चलाई सर, और उनके पहले आज का आपका ओपनिंग गीत। अमन सर जी अब तक जितनी फरमाइश चलाई सर सभी गीत सुपर और सुपर सुपर है। और मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा हमारे मित्र आदरणीय जाकिर मुलानी जी को, इन्होंने इतनी बेहतरीन थीम दी सर आज। आज जो बारिश हो रही है सर, गीतों की बारिश, हम इस गीतों की बारिश में पूरी तरह भीग चुके हैं सर, और आपने भी सर इतनी अच्छी बारिश कराई गीतों की तो मज़ा आ रहा है। आज का कार्यक्रम भी हमेशा की तरह और उससे भी बढ़िया ललन टॉप हो रहा है सर, बोले तो रेडबुल हो रहा है सर, आपकी प्रस्तुति काबिले तारीफ, थैंक यू सो मच इतने अच्छे कार्यक्रम सजाने के लिए। मैं फुले भक्त संजू भाऊ सभी को धन्यवाद बोलना चाहूंगा आपके माध्यम से,
0: धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि बारिश के पानी को अपने हाथों में समेट लो, जितना आप समेट पाए उतना आप हमें चाहते हैं और जितना ना समेट पाए उतना हम आपसे चाहते हैं। वाह क्या बात है जी, बहुत ही चलाक हैं जी आप, ओहो। और आरिफ सिंधी जी लिखते हैं कि आवाज तो बहुत एचडी साउंड में आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और सरफराज जी लिखते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग की फरमाइश है, बिल्कुल। और नाहिद जी लिखते हैं कि सुन सुन बरसात की सुन, ये गाना अच्छा, ये शमा ये छाया हुआ है जैसे रेडियो पर, ये किसी ने अपना पसंदीदा गाना हमें और वो नगमा बजाया हुआ है, और तुम जरा मुस्कुरा कर खिड़की से बाहर तो देखो, इस भीगे मौसम में सीधे दिल पर जादू छाया हुआ है, आए है क्या बात है। मीना जी लिखते वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना चल रहा है। अमीना खान जी लिखते हैं कि काश उसके सारे दांत गिर जाएं जब वो किसी और लड़की को देखकर मुस्कुरा क्या बात है जी जी बिल्कुल ऐसा ही हो, ओके जी। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि हमारी तरफ से गाने की आवाज अच्छी आ रही है, ओके ठीक है। बाबूलाल जी लिखते हैं कि अमन जी आपकी आवाज बहुत प्यारी आ रही है, ओके थैंक यू सो मच जी। और यहाँ पे इशाक हुसैन जी लिखते हैं कि मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगला गाना प्ले करना वाला हूँ मैं वो सुनील कुमार जी बांका बिहार से, सुनना चाहते हैं भीगी हुई है रात, जल रहे हैं हम बिल्कुल।

बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भीगी हुई है रात, सच में रात हो गई है ना, और वो भी भीगी हुई, और जल रहे हैं हम क्योंकि बरसात हो रही है ना, फिर भी जल रहे हैं हम भाई, क्या करें क्या करें। ओके जी, और ओके जी, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दत्तक्रम जी जुड़ चुके, लिखते हैं कि सुनील जी की पसंद का गाना सुपर से ऊपर लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। जितेंद्र जी लिखते हैं कि फूला भक्त संजू भाव जी का मुझे फीडबैक बहुत अच्छा लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ओके जी, और फूला भक्त जी लिखते हैं कि ये सुन बरसात की धुन, इशाक हुसैन जी की फरमाइश मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ओके जी, ओके, और मैं बता दूं यहाँ पे एमडी नाजिम जी लिखते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट सुपर हिट पसंद सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कुंता जी लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत फरमाइश है, ये मजा आ गया है सुन के। मीना जी लिखते हैं कि वाव बहुत ही खूबसूरत गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मीना जी लिखते हैं कि भीगी हुई है रात मगर जल रहे हैं हम, बहुत ही प्यारा गाना।

बरसात के मौसम में, वो यानी कि तन्हाई के आनंद में। और सुना चाहते हैं ये राजेश कुमार जी और नितिन सक्सेना जी, तो आप दोनों की पसंद पे मैं सुनवाता हूँ ये गाना बरसात के मौसम में। इंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल, वैसे मैं बता दूं कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। वैसे गाना मेरे पास और फिर भी बहुत सारे आए हुए हैं, तो यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि भीगी हुई है रात जल रहे हैं हम, गाना बहुत अच्छा लगा है। एंड बाबूलाल जी लिखते हैं कि सुनील जी की पसंद बहुत ही सुपर डुपर हिट लगी है। और साथ साथ में बता दूं, दत्तकम जी लिखते हैं कि राकेश शर्मा जी आपका गाना मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। और परवेश कुमार लिखते हैं सुपर सॉन्ग है, और राकेश शर्मा जी का ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: हेलो अमन सर जी, ये तो सॉन्ग मैंने डाला था बरसात के मौसम में, और एक सॉन्ग
0: जी अभी वो आने वाला है, बिल्कुल आएगा तो आपका नाम आ जाएगा। मीना कुमार जी लिखते हैं कि शायरी कहाँ और कैसे भेज, यही भी भेज सकते हैं मेरे पास शायरी, मैं आपके शायरी को जरूर शामिल करूंगा, बिल्कुल यही भेजिए जहाँ मैसेज कर रही है। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि वाह मजा आ गया इस गाने को सुनकर, सुपर फरमाइश। मीना जी लिखते हैं वाह वाह वाह बहुत खूबसूरत लाजवाब गाना है। इसी बात पर अगला गाना जो है वो मीना इब्राहिम जी का ही है, वो भी सुनना चाहते हैं ये बहुत ही प्यारा सा ट्रैक, इंजॉय द ट्रैक, मीना इब्राहिम जी।

और ये गाना मैं पहली बार सुना हूँ। थैंक यू सो मच मीना जी। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि बादलों से कह दो जरा सोच समझ के बरसे, बादलों से कह दो जरा सोच समझ के बरसे, अगर मुझे उनकी याद आ गई तो मुकाबला बराबरी का होगा। अरे भाई अभी आपका ही गाना प्ले होगा, इसी बात पर टेंशन मत लीजिए। और नाजिम जी लिखते हैं ऑसम सॉन्ग सुनने को मिला है, मजा आ गया सुन के। और रवि मोड़े जी लिखते हैं गुड इवनिंग अमर सर जी, बहुत मैं भी जुड़ गया हूँ, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। मीना जी लिखते हैं कि सर एक शाम ये यहाँ पे लिखते हैं, ये लिखते हैं कि सर एक शाम है उत्तरी दो तकिया डी नोटरी, मेरा लाखों का सावन जाए आई है मजबूरी मेरा घर। अच्छा ये नहीं नहीं नहीं नहीं, एक दिन में एक ही गाना सुनना है, दो नहीं। बिट्टू कुमार जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है बहुत और अच्छा ओके ठीक है मैं देखता हूँ कोशिश करता हूँ। नाही जी लिखते हैं कि इस भीगे मौसम में वो खिड़की पर बैठी है और हाथों में चाय और जुल्फे बिखरी है, हम समझी कि वह हमारी याद में कोई है, पर यानी पास जाकर देखा तो वह इंस्टाग्राम की रील बना रही है। ओ माय गॉड आजकल बहुत यानी ट्रेंडिंग में चल रहा है। मीना जी लिखते हैं कि मीना इब्राहिम जी लिखते हैं कि थैंक यू फॉर मैं यानी प्लेइंग रिक्वेस्ट ओके। जितेंद्र जी लिखते हैं बहुत ही शानदार गाना है। और कुंता जी लिखते हैं कि वाह वेरी वेरी वेरी नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच मीना जी। और मीना कुमारी लिखते हैं कि सच में ये मीना जी का गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। और इसी बात पर जैसे कि मैंने कहा अनिल यानी के कश्यप जी का गाना सुनवा रहा हूँ, इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं। यहाँ पे पूजा भास्कर जी लिखती है कि हवा बनकर मैं तुझसे हर पल तुझे छू जाऊंगी और तेरी उदासी को अपनी मुस्कान से मैं चुरा जाऊंगी। और जब भी खुद को अकेला पाएगा तू जहां मैं बनकर साया तेरे साथ नजर आऊंगी। हाय क्या बात है जी। वैसे अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि अनिल कश्यप जी का गाना सुपर हिट लाजवाब लगा है। और फुले संजीव भाव लिखते हैं कि अनिल कश्यप जी का गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। थैंक यू सो मच। एंड और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि अनिल कश्यप जी की पसंद लाजवाब बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा। एक मीना जी लेते हैं वाह क्या बात है, बहुत शानदार पसंद है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। सर्वजीत जी लेते हैं कार्यक्रम शानदार चल ही रहा है, मजा आ रहा है बहुत। नाही जी लेते हैं कि इन ठंडी हवा में एक अजब सा सुरूर है, मेरे दिल को तुम्हारी मोहब्बत का पूरा गुरूर है और अब हर बूंद हर सांस में बस तुम ही तुम बसे हो। ये मौसम तो बस एक बहाना है, असल में याद तुम्हारी भरपूर है जी। याद करते रहिए और सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। जितेंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना लगा है, मुझे बहुत मजा है। अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ जिसे भेजा हुआ है हमारे क्या नाम है इनका विष्णु चंद्र जी ने। आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी, बिल्कुल बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी।
1: ऐ मेरी हमराज मुझको थाम ले,
0: थाम लो प्लीज।
1: जिंदगी से भाग कर आया हूं।
2: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: बिल्कुल बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी भाई।
1: मेरी जान, मेरी दर्द मोहब्बत का कुछ ख्याल करो।
0: ख्याल करो ना जी,
2: सब कुछ भुला दो,

बिल्कुल बहुत देर लगेगी जी, बहुत देर लगेगी। और वैसे अब मैं तो यही कहने वाला हूँ कि भाई थम के बरस, जरा थम के बरस, मुझे महबूब के पास जाना है यार। और बारिश मत हो जाना प्लीज। और नाजिम से देखने का औसम संग सुनने को मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। और साथ ही साथ मैं बता दूँ नाहिद जी से कि लिखते हैं कि वो रास्ता भी वही है, मंजिल भी वही है, और मेरी इन इन प्यासी आंखों में तो एक उम्मीद जगी है। और तुम आओगे जरूर, ये दिल रोज कहता है मुझसे, चाहे वक्त कितना भी बदले, मेरी वफा तो वही है। अच्छा जी, काजल झका जी इंजॉय कर रही है, धन्यवाद देते हैं काजल जी। और सर्वजीत जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत पसंद है, बहुत खूबसूरत गीत है। अमीना खान जी लिखते हैं कि आज के प्रोग्राम का नाम कौन सी वाली बरसात रहेगी, राज कपूर वाली या बॉबी देओल वाली, और क्योंकि बेस्ट सॉन्ग वो भी बरसात हो रही है जी, हो रही है ना, सुन रही है ना, और क्या नाम दे रही है जरा बताइएगा मुझे जरूर। और दत्ताकर जी लिखते हैं कि जी बहुत ही देर लगेगी और शायद नहीं भी बजेगी क्योंकि आपका गाना मुझे शायद मिला ही नहीं है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि वाह क्या सॉन्ग है, मजा आ गया। गजानंद जी लिखते हैं कि आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, बहुत शानदार पसंद है, लेकिन ये तीन चार जो दोस्त हैं वो तो करे नहीं भाई, थम के बरस मेरा महबूब आने वाला है। और वो है बाबूलाल अंजाना जी, सुभाष तिवारी जी और परवेश कुमार जी, सभी को सुनना है थम के बरस, जरा थम के बरस। हाँ जी भाई थम के बरस।

और बहुत से दोस्तों का रिक्वेस्ट ये आ रहा है कि आपने फीमेल में क्यों नहीं प्ले किया। कोई बात नहीं भाईजान, थोड़ा सा फीमेल में भी सुन लीजिए। नो प्रॉब्लम भाई, आप सबकी बातें सर आंखों पर है।

0: अब उम्मीद करते हैं कि आप दोनों अब सभी की फरमाइश एकदम कंप्लीट हो गई होगी, क्योंकि भाई दोनों आवाजों में मैंने प्ले कर दिया। वैसे मैंने इसलिए प्ले किया था वॉइस मेल वॉइस में क्योंकि मैं गा सकूं, इसलिए कोई बात नहीं भाई, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। वैसे गाना बहुत ही प्यारा था और बहुत सारे फीडबैक भी आए हुए हैं मेरे पास। कुंता जी लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल फरमाइश है ये, मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये गाना। और नितिन सक्सेना जी लिखते हैं कि मजा आ गया सर जी, क्या बात है, क्या बात है जी, ओके जी। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: जय अमन सर जी, सभी भाई और बहन अपने अपने गाने में सम्मिलित करते हैं सभी को, आप प्रोग्राम भी बहुत अच्छा चल रहा है, आपको भी धन्यवाद देते हैं और सभी भाई और बहन को भी धन्यवाद देते हैं।
0: थैंक यू सो मच आपका भी। और साथ ही साथ नंदनी मालिक जी के प्रोग्राम तो शानदार शानदार शानदार हो रहा है। जितेंद्र जी लिखते हैं कि वाह सुपर फरमाइश सभी दोस्तों का, मिली जुली फरमाइश, मजा के सुन के। और मीना जी लिखते हैं वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारी पसंद है, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। एंड रविंदर गोरखपुरी जी लिखते हैं कि मस्त मस्त मस्त सर जी सॉन्ग सुनकर तो दिल गदगद हो गया। अच्छा जी सच में कहा। रवि महाराज जी लिखते हैं कि ये खुशियों की महफिल में नाम आपका आपका नाम हो, हर लम्हा आपके लिए एक खूबसूरत पैगाम हो, और गम का साथी कभी आप पर ना है, जिंदगी का हर सफर इतना आसान हो, आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी, लाजवाब सॉन्ग सुनने को मिला। और उसके बाद थम के बरस मुझे महबूब के पास जाना है, ये भी मजा आ गया इस दोनों सुन सुन के। और अमीना खान जी लिखते हैं कि प्रोग्राम का नाम रखा है मोहब्बत की बरसात, आए है क्या नाम दिया है अमीना खान जी, सच में अपने अच्छा नाम दिया है, आज आपका नाम मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। ओके जी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको इतना प्यारा नाम देने के लिए। और हमारे यानी प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बारिश की बूंदों में ये तेरा ही अक्स नजर आता है, हर मौसम आजकल बड़ा ही सुहाना हो जाता है, भींगती है जब पलके तुम्हारी यादों में, ये मौसम और ज्यादा दीवाना हो जाता है, है, है, है, है, है, है, क्या बात है जी। और गजानंद जी लिखते हैं कि दोस्त बाबूलाल जी और सभी दोस्तों की मिलीजुली फरमाइश मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। किशन बाजी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग सुनने को मिला, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि अमन सर जी आज के बरसात के तो सारे गाने लाजवाब, हाँ बिल्कुल। बाबूलाल जी लिखते हैं कि अमन सर जी सभी दोस्तों का गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ ये फीडबैक सुन लेते हैं।
2: गुड इवनिंग अमन सर जी, जम के बरस सॉन्ग मुझे बहुत बढ़िया लगा, आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा है अमन सर जी, आज मैं थोड़ा लेट हो गया।
0: कोई बात नहीं जी, आप आ गए ना। ओके जी नाजिम जी लिखते हैं लाजवाब सॉन्ग सुनने को मिल रहा है। और मीना जी लिखते हैं थैंक यू सो मच, आपने फीमेल वर्जन भी प्ले कर दिया है। और ओके जी, और यहाँ पे ओके जी अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ, और जिसे भेजा है किस दोस्त ने जैसा देखना, प्रमोद कुमार जी ने, वो बिजली और बादल को सुनवा रहे हैं भाई, सभी दोस्तों को डेडिकेट भी किया, इन्होंने इनकी लिस्ट बहुत लंबी है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, इसीलिए गाने का यो जो ये ट्रैक है एंजॉय कीजिए।
3: सुन बिजली
0: भाई, प्रमोद जी एंजॉय कीजिए।
4: झूठा कहीं का प्यार नहीं करता और आवाज देता है,
0: बहुत प्यार करते हैं यार।
3: ये बादल
4: बादल कैसा बादल
3: है तेरे प्यार में पागल
4: पागल, अरे पागल है तो पागल खाने जा, मेरे पीछे क्यों पड़ता है

0: बिल्कुल सुन बिजली सुन बादल आए है, क्या बात है। और सच में आज तो प्यार मोहब्बत वाले गाने ने तो कमाल ही कर दिया है। वैसे बहुत सारे फीडबैक भी आ गए मेरे पास, दाता जी लेते हैं कि भाई प्रमोद जी आपका गाना मुझे बहुत ही सुपर हिट वाला लगा है। सच में का जी, गजानंद जी लेते हैं कि दोस्त प्रमोद जी के पसंद मुझे बहुत ही पसंद, एकदम झक्कास मजा ही आ गया है सुन के आज तो। और प्रमोद कुमार लेते हैं थैंक यू सो मच अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। जितेंद्र जी लेते हैं बहुत ही बेहतरीन पसंद चल रही है। साथ ही साथ राहुल पासी जी लेते हैं कि अमन सर जी ये गाना मुझे बहुत बढ़िया लगा है और मैंने पहली बार इस गाने को सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं दोस्त को, इतना प्यारा उन्होंने गाना सुनवा दिया है। एंड नाजिम जी लेते हैं सच में सुपरहिट पसंद है, हाँ जी। और मीरा जी लेते हैं कि वाह ये कितना प्यारा कितना सुंदर गाना है जी, है ना। और रविंद्र गोरखपुरी जी लेते हैं कि वाह क्या गीत है, सुपर सुपर सुपर से ऊपर वाला गाना चल रहा है जी। बाबूलाल जी लेते हैं कि प्रमोद जी के पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको। बीटू कुमार लिखते हैं कि प्रमोद जी आपका ये गाना तो मुझे बहुत मस्त लगा एकदम। और नितिन सक्सेना लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग है जी, बिल्कुल है। इसी बात पर अगला गाना सुनवाते हैं हम आपको महक जी की पसंद पर। महक जी इंजॉय कीजिए इस प्यारे से ट्रैक के अपने डिमांड पे।
1: बस मोला जी मेरा 2 मिनट काम हो ही गया, अभी जाती हूँ।
0: कहाँ जाती हैं
2: थर? हाँ बस अभी बस जा ही रहा हूँ।

क्या गाना है। और महक जी, आप बनती हैं आज के सॉन्ग विनर, तो और कोई गाना सुनना चाहती हैं तो जरूर मुझे जल्द से जल्द भेज दीजिए अपना लिंक या अपने गाने के बोल।

बिल्कुल, हम लोग बारिशों के मौसम में भीगने लगे हैं। फिलहाल हम यहाँ पे शामिल करते हैं, यहाँ पे कुंता जी लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत फरमाइश है यानी प्रमोद जी का, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। रवि मार जी लेते हैं, सुपर लाजवाब सॉन्ग है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सुन बिजली सुन बादल वाला गाना यानी कि प्रमोद जी का लिए, और प्रमोद जी लिखते हैं कि महक जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई है, थैंक यू सो मच। गजाना जी लिखते हैं कि महक जी की पसंद मुझे बहुत लाजवाब लगी है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अगली पसंद मैं सुना रहा हूँ वो शिवम जी की, और शिवम जी इंजॉय कीजिए अपने ट्रैक को।

सच में ये गाना भी बहुत प्यारा लगा है। थैंक यू शिवम जी। और यहाँ में बाबूलाल जी लिखते हैं कि महक जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई है। जितेंद्र जी लिखते हैं बहुत ही लाजवाब और सुंदर गाना चल रहा है। और अरुण मंडल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है अरुण मंडल जी राजकोट से। और गजानंद जी लिखते हैं कि ये शिवम जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई कुमार सानू की आवाज़ में, ये लाजवाब गाना।

बिल्कुल एक मुकम्मल गजल देख ली भाई। और वैसे अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो तो भाई क्या कहें, बहुत ही प्यारा है, जिसे लेकर आए हैं सर्वजीत सेठी जी। सुनना चाहते हैं? अच्छा, इनका

0: Keep on hidden.
1: अमन सर जी नमस्ते।
2: नमस्ते,
1: मैं सरवजीत सेठी फाजिलका पंजाब से। कैसे हैं आप?
2: बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: हम भी अपने स्थान पर ठीक हैं। आज हमें बलमा मूवी का गीत

0: मिलेंगे जब बारिश होगी। पहले तो यह गीत आपको डेडिकेट है, उसके बाद आपकी सुंदरता की मूर्त को भी यह गीत डेडिकेट है, वंशिका मैम को भी यह गीत डेडिकेट है, और परमार सर जी को भी यह गीत डेडिकेट है, और रेडियो होस्ट चार सुनने वाले सभी श्रोताओं को भी यह गीत डेडिकेट है।
1: ओके जी, तो सुनवा रहा हूँ आपकी पसंद का ये गाना। सच में ये मौसम भी गया, वो मौसम भी गया, और मिलेंगे जब हाँ बारिश होगी। और ये क्या, आप लोग मुझे बताएं कि क्या सच में यानी बारिश में मिलने से मजा कुछ और ज्यादा आता है क्या, मुझे भी जानना है, क्योंकि अगर मुझे भी मिलना हुआ तो मैं कैसे मिलूंगा।

वैसे मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं, शामिल करता हूँ मैं, और वो है यहाँ पे नाजिम जी ने सुपर सॉन्ग बजा गया जी। इस गाने को सुनकर तो दिल खुश हो गया एकदम, मेरा भी। और राहुल पासी जी ने लिखा, अमन सर जी आज, अमन सर जी ये सॉन्ग मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जी जी बिल्कुल, इस सभी को अच्छा लगता है भाई। दत्ता जी लगते हैं, अमन जी जी ये बताइए कि आपका जो गाना मुझे नहीं मिला, आपने किस गाने की फरमाइश की, वो गाना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दत्ता करम जी बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। मीना कुमारी जी लिखते हैं कि ये जिस्म को पालना इश्क नहीं, रूह को महसूस करना इश्क है, और किसी को अपना बनाना इश्क नहीं, और खुद से उसका बन जाना इश्क है, दूर होकर भी इश्क निभाना ये इश्क है, और पास होकर भी कोई भी निभाता है, जो दूर होकर निभाते हैं वो तो मोहब्बत है। हाय क्या कह दिया मीना जी। रविंद्र गोरखपुरी लिखते हैं कि सॉन्ग तो बहुत ही अच्छा चॉइस है, मजा आ रहा है सुन के। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि सर्वजीत शेट्टी जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई। एंड अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि जी तो आपने कहाँ भेजा है, यही भेजिएगा तभी प्ले करूंगा ना, आपको यही भेजना होगा फीडबैक अपना, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे पास आया नहीं है, फीडबैक यही भेज दीजिए। और कहीं तो दिख नहीं रहा मुझे आपका फीडबैक, आप जहाँ पे मैसेज कर रहे हैं मुझे यहीं पे देखिए, वहाँ पे नीचे होगा माइक, वहाँ पे रिकॉर्डिंग पर क्लिक कीजिए, रिकॉर्डिंग पर अपना फीडबैक भेजिए, और मतलब वहाँ रिकॉर्ड करके भेजिएगा तो मेरे पास आपका फीडबैक आ जाएगा, मैं जरूर प्ले करूंगा। नाहिद जी लिखते हैं कि बरसात की बूंदों में वो मुस्कान तुम्हारा, और वो भींगते हुए हौसले के वो पास आना तुम्हारा, ये मौसम तो चला जाएगा इन कुछ देर में, पर ये तो बारिश रहेगा सावन तुम्हारा। अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि ये मौसम भी गया, वो मौसम भी गया, और मिलेंगे जब। हाँ सर्वजीत जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई है। जितेंद्र जी लिखते हैं कि ये गाना तो मुझे बहुत पसंद आया है। एंड प्रमोद कुमार लिखते हैं कि सुपर सुपर सुपर सॉन्ग की फरमाइश है। एंड कुंदा बेनी जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत फरमाइश है। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि बारिश वाला मिलने का तो मजा ही कुछ और होता है। अच्छा लगता है अभी मिले हुए हैं ना, इसलिए अगला गाना मैं प्ले करने जा रहा हूँ, आरजे सोनी जी का, जो बहुत देर से मतलब स्टार्टिंग से मुझे सुनती है अंत तक। एंड थैंक यू सो मच आपके, मतलब क्या कहें, इस प्यार के लिए, क्योंकि आप मुझे पूरा शुरू से अंत तक भी सुनती हैं। थैंक यू सो मच, एक बेस्ट आरजे होकर आप मुझे सुनती हैं, मुझे अच्छा लगता है। एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

और इसी बात पे एक अगला गाना सुनिए हमारे राजेश राजेश कुमार जी का, ना राकेश कुमार जी का, अब मुझे देखना पड़ेगा, नाम देखना पड़ेगा क्या नाम है उनका। हाँ, राजेश कुमार जी हैं। तो भाई बरसात का मजा ले ला ये बात पर राजेश कुमार जी।

0: बिल्कुल, बरसात का मजा लेते रहिए, साथ साथ रेडियो हॉटस्टार का भी मजा लेते रहिए और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे अमन के साथ। वैसे मेरे पास बहुत सारे फीडबैक्स आए हुए हैं तो उसको भी मैं शामिल कर ही लेता हूँ। भाई क्या क्या कहते हैं दोस्त। सबसे पहले तो जितेंद्र जी लेते हैं, वाह क्या पसंद है आरजे सोनी जी, भोजपुरी गाना सुनकर तो मजा ही आ गया एकदम, दिल गदगद हो गई। और नाजिन जी लिखते हैं कि वाह वंडरफुल फरमाइश, थैंक यू सो मच। एंड राजेश कुमार लिखते हैं थैंक यू अमन जी, आपने मेरा भी गाना प्ले कर दिया है। और यहाँ पे लिखते हैं यानी कि पूजा भास्कर जी, वाह आरजे सोनी जी की पसंद बहुत ही भोजपुरी और बहुत ही प्यारी, मजा आ गया सुन के, थैंक यू सो मच। एंड राहुल पासी जी क्या कहते हैं,
1: अमन सर जी ये सॉन्ग मुझे बहुत बढ़िया लगा, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, आपका प्रोग्राम रेडियो हॉटस्टार ऐप पे नहीं चल रहा, रेडियो गाने पे सुन रहा हूँ मैं ये प्रोग्राम।
0: अच्छा तो

0: मतलब रेडियो हॉट एटा पर क्यों नहीं चल रहा है जी? यहाँ पर तो ओके है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन पता नहीं और यहाँ पे यानी कि कुंता बनर्जी लिखते हैं कि वाह बहुत शानदार प्रोग्राम चला अमन जी, और किसी ने सच ही कहा है कि यानी कि कोई तो चाहत की बारिश की बूंदों की, और तुमसे मेरे ए फरहाद वरना कौन गिरता है आसमान पर पहुंचने के बाद। जी बिल्कुल सही कहा आपने कुंता बेनी जी आज, ओके जी। और यहाँ अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि आरजे सोनी जी और राजेश जी दोनों की पसंद भोजपुरी गाना हमें बहुत पसंद आया, और भले समझ में नहीं आया लेकिन गाना मजा आया सुन के। ये फिर
1: क्या अमन सर जी, जी सब मजा मिट्टी क्यों किरकिरा कर देते,
0: कैसे कैसे किरकिरा कहते हैं आप? अब आप हमको सिखाएंगे कि मुझे कैसे प्रोग्राम करना है, जहाँ क्या कहते हैं यार आप लोग, ठीक से फीडबैक दिया कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ये बारिश के मौसम में ठंडक और ताजगी लाती है। अच्छा बारिश ये मौसम में ठंडक और ताजगी लाती है, बारिश से पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और खेतों में फसलें अच्छी होती हैं और नदियां और तालाब में पानी का स्तर बढ़ता है, बारिश के कारण वातावरण स्वच्छ और शुद्ध हो जाता है और कई जगहों पर बाढ़ का खतरा भी होता है, लेकिन बारिश में बच्चों का खेलना और कागज की नाव चलाना मजेदार होता है और गरज और चमक के साथ आने वाली बारिश का कुछ अलग ही मजा होता है। बारिश के बाद इंद्रधनुष का नजारा भी बहुत सुंदर लगता है और साथ ही साथ बारिश से मिट्टी की वो जो सूंधी खुशबू आती है ना वो बहुत प्यारी लगती है। ये क्या कहते हैं जरा सुन लेते हैं।
2: अमन सर नमस्ते।
0: नमस्ते।
2: आज काफी लेट हो गया सिवान से घर आने में। अच्छा। और उसी टाइम हम अब मजबूरन हेलमेट में फंसा के रेडियो सुन रहा था मैं।
0: अच्छा।
2: और उसमें बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही थी, मैं आ रहा था और आप गाना प्ले कर रहे थे थम के बरस और ये बोल रहे थे कि जम के बरस, मुझे हंसी आ रहा था इसके। बाकी मेरे गीत को जितने लोगों ने सराहा था उन सबको मेरे तरफ से धन्यवाद।
0: बिल्कुल, अरे हम थम के भी बरस कर रहे थे, सब कह रहे थे ना, क्या कहेंगे, कहना पड़ता है ना। बाबूलाल जी लिखते हैं कि भोजपुरी गाना सुनकर तो मजा ही आ गया, अच्छा सच में कहा, ओके जी। और दत्ता करम जी लिखते हैं कि आयस अब देखना पड़ेगा आपका गाना, मुझे फिर से ढूंढना पड़ेगा। गजानंद जी लिखते हैं कि राजेश कुमार जी और आरजे सोनी जी के पसंद मुझे बहुत बेहतरीन लगी है, थैंक यू सो मच दोनों दोस्तों के इतना प्यारा प्यारा गाने के लिए। इसी बात पे अगला गाना जो मैं प्ले करने वाला हूँ वो डिमांड आई है हमारे बिट्टू कुमार जी की, जब कोई लड़की है जब वो हंसती है बारिश होती है, सच में बारिश होती है यार।

बिल्कुल बारिश होती है, लेकिन अगला गाना जो मैं प्ले करने वाला हूँ वो डिमांड आई है राधे जी की, बिजुरिया सॉन्ग वरुण धवन वाला। अब पता ना बिजुरिया सॉन्ग कैसा है, अब तो सुनने के बाद ही पता चला है कि कैसी बिजली चमक रही है।

वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं यहाँ पे। गजानन जी लिखते हैं कि बिट्टू कुमार जी और राधे जी की पसंद, मजा आ गया सुन के। और कुंता बहन जी लिखते हैं कि लाजवाब फरमाइश, सुपर फरमाइश, दिल खुश हो गया है। बिट्टू जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मनसा जी गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ पे राजमल जी लिखते हैं कि अर्जामन जी बहुत बहुत ही सुपरहिट गाने प्ले हो रहे हैं। मीना जी लिखते हैं कि अमन सर जी बहुत ही प्यारा गाना चल रहा है और आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, थैंक यू सो मच जी आपका भी। और यहाँ पे मीना जी लिखते हैं कि वाह वाह वाह वाह, बहुत ही लाजवाब गाना है, थैंक यू सो मच राधे जी इस गाने के लिए। और वैसे अगला गाना जो मैं प्ले करने वाला हूँ अभिषेक तिवारी जी का।

वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं और वहाँ पे मैं बता दूं कि सबसे पहले गजानन जी रीते बिट्टू कुमार जी और सभी दोस्तों की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आ रही है, धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि आखिरी पलों में तो खूब आनंद आ रहा है जी। अरे आप सुनिएगा तब न जी, बिना सुने कैसे कहिएगा जी, आनंद नहीं आएगा जी। वैसे मैं बता दूं कि यहाँ अमीरा खान जी लिखते हैं कि धमाल सॉन्ग है। हाँ जी बिल्कुल धमाल तो है, अभी और धमाल होने वाला है। बाबूलाल जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद सुनने को मिल रहा है। एंड जितेंद्र जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग नाइस सॉन्ग। एंड यहाँ पे नाजिम जी लिखते हैं कि सुपर हिट पसंद है, थैंक यू सो मच। और इसी बात पे अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो गाना होगा महक जी, जो आज के विनर बनी हुई थी सॉन्ग विनर, तो उनका गाना मैं प्ले कर रहा हूँ। तो एंजॉय कीजिए महक जी ये प्यारा सा ट्रैक।

और आरजे सोनी जी का एक मैसेज पहुंचा हुआ है। लिखते हैं कि बरसती बूंदों से बस एक ही दुआ करती हूँ, लिखती हैं कि बरसती बूंदों से बस एक ही दुआ करती हूँ, हर बारिश में तेरा तेरा इंसाफ मांगा करती हूँ, भींग जाए हम दोनों एक ही छत के नीचे, आए है भींग जाए हम दोनों एक ही छत के नीचे, मैं बारिश से ज्यादा मैं तुझे चाह करती हूँ, और आज फिर बारिश ने तेरी यादों को छू लिया, आज फिर तेरी यादों ने बारिश को छू लिया, अच्छा सॉरी मैं उल्टा पढ़ रहा हूँ, आज फिर इस बारिश ने तेरी यादों को छू लिया और मेरे भीगे हुए दिल ने तेरे नाम ले लिया, और काश इस मौसम में तू मेरा साथ हाथ थाम ले और हर बूंद को हमारी मोहब्बत का गवाह बना दे, आए है क्या बना दे, क्या बात है क्या बात है, लाजवाब लाजवाब लाजवाब। ओके जी, अब इसी बात पर अगला गाना जो मैं प्ले करने वाला हूँ, अजय कुश जी सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए। ओ माय गॉड, इनका गाना डाउनलोड नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं, इस गाने को मैं प्ले कर रहा हूँ जिसका नाम है यानी कि संदीप सुतार जी, एंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक। मेरे पास बहुत सारे मतलब मैसेज आ चुके हैं। सबसे पहले राहुल जी लिखते हैं कि अमन जी मस्त मस्त गाने प्ले हो रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है आज के प्रोग्राम में। नितिन सक्सेना जी लिखते हैं कि नहीं सर जी, एक दिन में एक ही गाना मैं प्ले कर पाऊंगा, इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और कल्पना सक्सेना जी जुड़ चुकी है, बहुत बहुत वेलकम है कल्पना जी आपका भी। और दशाकांत जी लिखते हैं धन्यवाद अमन सर जी, गाना मेरा प्ले कर दिया आपने। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि काश कोई इस तरह भी वाकिफ हो मेरी जिंदगी से, काश कोई इस तरह से वाकिफ भी हो मेरी जिंदगी से कि मैं बारिश में भी रोऊं और वो मेरे आंसू पड़ आए हैं। क्या बात है भाई, लगता है कि दिल के टूटे हुए हैं आप भी। बाबूलाल जी लिखते हैं कि दत्तक्रम जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई है, धन्यवाद देते हैं उनको भी। और राधाकृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही शानदार फरमाइश चल रही है। और गजन जी लिखते हैं कि छतरी नकुल बरसात में वाला गाना मुझे बहुत पसंद आया। नहीं जी लिखते हैं कि भीगी हुई रात हो और अंधेरा में हाथ तुम्हारे हाथ हो, हौले हौले चलती हवा में बस तुम्हारी बात हो, और बरसता रहे सावन यूं ही रात भर बेहिसाब, और उस बारिश में भींगती हुई हर मोहब्बत की शुरुआत आए है। क्या बात है जी, इसी बात अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ, वो है अजय कुजी का। अजय कुजी गाना अब मैंने प्ले कर दिया, एंजॉय कीजिए।

और मेरे पास समय कम है, इसलिए अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ शाहिद अंसारी जी का। शाहिद अंसारी जी गाना मैंने आपका प्ले किया, एंजॉय कीजिए शाहिद जी। इसके बाद इससे मैं शामिल करता हूँ फीडबैक।

वेलकम बैक। और इसी बात पर अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ जाकिर खान जी की पसंद है, यही पतंग जैसे हवा में लहरा है, उसके बाद से मैं फीडबैक शामिल करने की कोशिश करता हूँ यार, क्या करूँ, मुझे 10 बजे निकलना है ना, उससे पहले।

वेलकम बैक। और यहाँ पे नहीं जी लिखते की आंखों ने देखा है चेहरा तेरे इस कदर कि अब खुदा से और कोई दुआ नहीं मांगी जाती है। और तू मिल गया तो मुकम्मल हो गया ये मेरा जहां, अब और तेरे बिना जिंदगी की कोई और पल सोची नहीं जाती है। क्या बात है जी। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि यानी किया ना करो मुझसे इश्क की बातें, बिन बारिश के ही भींग जाती हैं रातें। आए हाय हाय क्या बात है भाई, लगता है छुपा रुस्तम है आप भी। ओके जी। और यहाँ पे मीना जी लिखते हैं मुझे बारिश के सर, अच्छा मुझे बारिश पसंद नहीं है। अच्छा हो गया, क्यों पसंद नहीं है जी, हमें तो पसंद है बारिश बहुत ज्यादा। गजानंद जी लिखते हैं कि जाकिर जी के पसंद मुझे बहुत ही पसंद आया, थैंक यू सो मच। उसी बात पे अगला गाना मैं मतलब

आरजे सोनी जी लिखते हैं कि एक तमन्ना थी जो हसरत बन गई, एक तमन्ना थी जो हसरत बन गई, और कभी दोस्ती थी अब मोहब्बत बन गई, और कुछ इस तरह शामिल हुए जिंदगी में कि तुझे सोचते रहना ही मेरी आदत बन गई। आए हाय क्या बात है।

0: मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे, फिर तो मस्त हवा।
1: और अब मेरे पास चूंकि यानी समय कम है और लेकिन मुझे निकलना पड़ेगा क्योंकि मुझे कहीं जाना है। ओके, तो इसीलिए मैं अभी यहीं पे प्रोग्राम को वाइंड अप कर रहा हूँ और आपको ही असुविधा के लिए खेद है। मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय।

देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो

भी नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं घरवाली की जय।

0: ये कमबख्त याद ही तो तबाह कर देती है डॉक्टर साहब। उस गली से गुजर हुआ नहीं कि पलटना मुश्किल हो जाता।
1: फिर तो जरूर कोई ऐसी याद होगी जिसका वास्ता आपके दिल से होगा।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: घोड़ा ये क्या रहा घोड़ा चतुर एक पे रहना या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना गा
1: एक चतुर नार करके सिंगार
2: एक चतुर नार बड़ी होशियार
1: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात
2: अपने ही जाल में फंसत जात
1: हम मरत

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

तुम अपना वादा भूल गए प्रकाश। तुमने कहा था कि हमारे प्यार की अधूरी कहानी अगले जन्म में जरूर पूरी होगी। बोलो प्रकाश, कहा था ना? मगर वो कहानी आज भी अधूरी है। मैं आज भी इस वादी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? जवाब दो प्रकाश, क्या तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगे? बोलो प्रकाश, नहीं आओगे?

0: देगा ना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों तड़पाते हो बाबू?
1: मैं तुम्हें क्या तड़पाऊंगा, मैं तो खुद तड़प रहा हूं।
0: तुम यहां से चले क्यों नहीं जाते?
1: चला जाऊं कहां? चला जाऊं कैसे? चला जाऊं? ये तो वादी है जहां पर हम दोनों की मौत हुई थी। ये तो वो धरती है जहां पिछले जन्म के दो प्रेमी दफन हैं। ये तो वो जगह है जहां पर मरने से पहले हम दोनों ने जन्म जन्म तक साथ निभाने की कसमें खाई थी। तुम ही बताओ, इस धरती को छोड़कर कहां चले जाऊं, कैसे चला जाऊं?
0: तुम्हारी बातें मेरी समझ में कुछ भी नहीं आती है। आखिर तुम चाहते क्या हो बाबू?
1: मैं तुम्हें वो कहानी याद दिलाना चाहता हूं जो चंदनगढ़ के राजमहल से शुरू हुई लेकिन पूरी होने से पहले खत्म कर दी गई।
0: ये झूठ है, मेरा उस कहानी से क्या संबंध है?
1: संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। अगर तुम ना होती तो वो कहानी कभी शुरू ना होती। मेरा विश्वास करो, मुझ पर यकीन करो रत्ना, आज भी चंदनगढ़ के राजमहल में तुम्हारी तस्वीर लगी है।
0: तस्वीर?
1: हाँ।
0: मेरी तस्वीर?
1: हाँ।
0: नहीं नहीं बाबू, तुमसे जरूर कोई भूल हुई है, वो तस्वीर किसी और की होगी।
1: रत्ना, चंदनगढ़ यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं, तुम चलकर अपनी आंखों से देख लो और चलकर खुद ही फैसला कर लो। आज देखो देखो, ये चंदनगढ़ का राजमहल है, इसे देख के कुछ याद आया? जानती हो, पिछले जन्म में तुम यहाँ की राजनर्तकी थी और मैं यहाँ का राजगायक। इसी शाही बाग में हम मिला करते थे जहां से हमारी मोहब्बत शुरू हुई थी। कुछ याद आया? कुछ भी नहीं?
0: नहीं।
1: आओ आओ मेरे साथ।

0: ये वही राज दरबार है। वही दीवारें हैं, वही सतून है, इन पर की गई नक्काशी। बरसों बीत गए, कुछ भी तो नहीं बदला। इसे गौर से देखो, पहचाने की कोशिश करो। ये वही राज दरबार है, कुछ याद आया? आओ आओ मेरे साथ।
1: ये दीवाने खास है जहां पर नृत्य और संगीत की महफिलें जमा करती थी। याद करो, ये वही जगह है जहां पहली बार तुम्हारा हमारा सामना हुआ था। यहां पर महाराज बैठा करते थे और चारों तरफ दरबारी। उस तरफ गुरुजी का सिंहासन था और उस तरफ उस्ताद बंदे अली खां, और तुम गौरी के साथ मेरे बिल्कुल सामने बैठी थी। और जैसे महाराज का इशारा हुआ, मेरी उंगलियां सितार पर मचल उठी और तुम्हारे पांव बिजली की तरह थिरकने लगे।

ये वही जगह है जहां हम रहा करते थे। उस तरफ मेरा कमरा था और इस तरफ तुम्हारा। ये देखो,

0: कुछ याद आया रत्ना?
1: मैं रत्ना
0: रत्ना रत्ना

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 3 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: बन जा। आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया। जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं, पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया है, क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया। आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया।
1: आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया।
0: आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया।
1: आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया।
0: आएगो आएगो।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

शख्सियत लैला मजनू शिरी और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है यार।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान